जवन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जूथियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जच्छन उपजायो।

सेवा संगत पूपन कला होंडा आलम चंद है सैसारा तलवाड़ सुखला जगनानंदा साध है भानु सूड़ हंसा दी ढाला गुर भाई रतना दी माला जगनानंदा साध है भानु सूड़ हंसा दी ढाला गुर भाई रतना दी माला वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जुगो जुग अटल चवर छतर तख्त दे मालक बाणी के बोहित गुरु ग्रीन निवास सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की कृपा हुई है। गुरु चरणा की हाजरी भरदिया हुए पातशाह जी की अमृतमयी बाणी दा रस भिन्ना कीर्तन सरवण किया है। उपरंत समा होया है भाई गुरदास जी दियां वारां दी जो लड़ीवार विचार चल रही है। मैता सकतू आगरे चिड़ा हुआ निहाल निहाला, आगरे दी संगत दी कथा है। आपां सारे जानते हैं आगरे दा वो स्थान जिथे पहले गुरु साहिबाना दे समय तो ही सिखी दा वासा सी। इतिहास दी कथा है, पहले पातशाह गुरु नानक देव जी महाराज जी ने इत्थे अपने मुबारक चरण पाए सन। उपरंत मीरी पीरी दे मालक गुरु हरगोबिंद साहिब जी महाराज जी दा भी इत्थे ओ पावन अस्थान है जिथे सतगुरु जी ने अपने मुबारक चरण पौने किते। गुरु तेग बहादुर महाराज जी की प्रथाए तां ये लिखिया होया है कि शहीदी दे समय उन्हां दी जो गिरफ्तारी है वह आगरे तो ही होनी कीती सी, जिस नूं गुरु का ताल आखते हाँ वह पावन पवित्र अस्थान है गुरु तेग बहादुर महाराज जी की जितों गिरफ्तारी हुई। उतों सतगुरु जी नूं दिल्ली लेके आंदा गया सी। आगरे की धरती ते ही कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी का भी आगमन होया सी, आउणा होया सी। जदों बहादुर शाह नूं कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने बादशी शाही का तख्त लैके देना किया सी। ये बड़ा लंबेरा इतिहास है। जिस वेले औरंगजेब बादशाह की मौत हुई सी उस तो बाद बहादुर शाह और ये दूजे भरावां की आपस में बादशाही की प्राप्ति वास्ते जंग हुई सी, लड़ाई होनी कीती सी। इस बहादुर शाह ने भाई नंद लाल दे राही कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी दे कोलों आशीर्वाद की मंग कीती सी। इतिहास कहिंदा है इस लड़ाई दे विच गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने अपने सिख भेजे सन, सूरबीर बहादुर भेजे सन। जजों वो अज भी अस्थान है जिथे औरंगजेब बादशाह दे पुत्रां विच राज लैण वास्ते जंग होया, लड़ाई हुई सी। बहादुर शाह की जित हुई, ये हिंदुस्तान का बादशाह बनिया। ते इन्हें कलगीधर पिता गुरु गोबिंद सिंह साहिब महाराज जी ने भी सदा पत्र भेजिया से जदों इहदी ताजपोशी हुई है। अपने भरावां नूं मैदाने जंग विच मारन तो बाद ये जदों बहादुर शाह हिंदुस्तान का बादशाह बनिया है
ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਰਬਾਰ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਉੱਚੇ ਅਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਡਾਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੈਠਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਇੱਕ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਿਅੰਕ ਪਲੰਘਾ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਜੀ ਸਨ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸਥਾਨ ਸਨ ਉਹ ਨੀਵੇਂ ਸਨ। ਕਲਗੀਧਰ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚਾ ਪਲੰਘ ਡਾਹਿਆ ਗਿਆ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ ਗਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ। ਕਾਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੁੱਲਾਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਰੋਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੇਠੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਧਰਮ ਗੁਰੂ ਹਾਂ, ਕਾਜ਼ੀ ਹਾਂ, ਨਿਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਧਾ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਨ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਸਨਮਾਨ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਚੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਬਿਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਚਾਲ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਣੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੁਝ ਸ਼ੰਕੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ੰਕੇ ਨਿਵਿਰਤ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਇਹਨੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕੋਲ

वो जोसम तुम्हारी या ना तेरा जोसम की आंदा नाल ओ तुम्हारा लास्ट नेम है।

असंख नाव संख ताव आगम्मा गम्मा संखलु आसंख सर्वार हुए अक्री नाम करी सालाय अक्री ज्ञान गीत गुण गाय अक्री रखण मुदन बाण कर सत्संजो बखान जिने लिखे दसरणाए देवर माए तुम ते

ते अरंगी अनामे सर्वंगी सरकामे नरभंगी स्वरूपे सर्वंगी अनूपे न पुत्रा न मुत्रा न सुत्रा न मित्रा न ताता न माता न जाता न पाता

श्रीगिरीशरदकाय चम्बवा जुगासरु स्वम्बव अवरश्या मेरी तुम करो सिखियुबार आसिख संगरो दुष्ट जते अठवद उत्पाता सगल मलेश करु रणकाता जिया तुम तव शरणी परे तनके दुष्ट दुख्त भी मरे पुरख जमन पापरे तिहारे तनके तुम संगर सब टारे जो कल को एक बार ते आए हैं ताके काल निकल नए हैं रक्षा हुई ताही सब काला

सजी ससा न जाई न जाई ससा कद संजम रह करम कमाय ससे जिया मलीन है के संजम तूता जाय मान तो शब्द लागू वरसू रोचत लाए कह नान गुर प्रसादी सहज उपजै ऐसा साहब जाए जी हो मैले बारो निर्मला बारो निर्मल जीओ ता मैले तन जन्म जुआ हारिया

एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुरु प्रसाद

जपहो तक नम अवर निराफुल कम रहाओ ए मन इंटी हाथ करो फुन नेत्रों नींद न आवे रसना नाम जपहो तब मथिया इन बिद अमृत पावहो मन संपट जित सत सरनावण पावन पति तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह कहंदे कहें कहे कह जाव हैं तुम सर अवर न कोई भगत हीन नानक जन जंपै